0: क्या बात है, बड़ा शानदार, सुन के बड़ा वधिया लग्या। ते वाह गुरु, वाह जी वाह, क्या बात है। प्रोग्राम सर्ब रेडियो, ते नाल दिना शनिवार दा टाइम है, शनिवार दी शाम ते होवे कुछ खाण वाला शानदार खाना, ते असी हमेशा अक्सर ही रेकमेंड करते हैं, हाईली रेकमेंड करते हैं तंदूरी बॉयज़ ते। तुसी जरूर चक्कर ला के आओ जे हजे तक नहीं गए। शानदार स्वाद वाला खाना तुहानू मिलता है, भावें तंदूरी मोमोज होण, मलाई चाप, ते बहुत शानदार फूड तुहानू मिलता है उत्थे। ते चार लोकेशंस तो तुहानू हुण सर्व कर रहे ने। तंदूरी बॉयज ढाबा भी शैलबर्न तो ऑरेंजविल जाते हुए नॉर्थ वाले पासे आ रहे हो, जा रहे हो, तो जरूर ढाबे का एक्सपीरियंस लियो, तो नाले शानदार खाना भी तुसी जरूर खाया जाए। तंदूरी बॉयज 24 घंटे खुले ने, 7171 टोरब्रम रोड से, जा तुसी जड़ा हैगा अपना क्वीन एंड मैकलोगलन इंटरसैक्शन, उत्थे भी टेकआउट एंड डिलीवरीज लै सकते हो। तो जा फिर नवी लोकेशन डेरी रोड ते भी खुली है मिसी सागा दे विच, चार लोकेशन तंदूरी बॉयज ढाबा। नंबर संपर्क करन दे लई 905-956-2111, 905-956-2111। तंदूरी बॉयज। चलते हैं जी कॉल दे वाल जी। कुलदीप जी सत श्री अकाल।
1: हफ्ते
0: बाद फिर चले
1: अगले। हां जी हां जी,
0: नजारे ताडे ही है। क्या बात है, तुहाडा आंदा हुंदा मैसेज मैनूं पता है, तुसी इंडिया तो भी प्रोग्राम सुनदे हो, मैसेज करदे हुंदे हो। क्या बात है, क्या बात है,
1: गाना बड़ा वधिया लग्गा तुसी लाया ना जिला जी, क्या बात है, बहुत ज्यादा
0: सुन के बड़ा वधिया लगदा। बंदा हर चीज धन्नवाद करदा ना, भी आ पत्ते भी तेरे, हर चीज तेरी है, भी वाह रब तुसी, वाह गुरु, क्या बात है।
1: अरे यार भी समझते जी ना, मतलब साडी अपनी जिहड़ी हर कोई मम्मी विच ही है जी।
0: हां जी, वाह कोशिश ही है जी, साडे वल्लों भी कोशिश जारी है साडी।
1: बड़ा वधिया मैसेज जी, बहुत वधिया मैसेज है। चलो करो टॉपिक शुरू, फिर करदे जी।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, बहुत धन्नवाद सर, थैंक यू, थैंक यू जी। 56530-5630, सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल जी,
0: की हाल चाल है जी?
2: बढ़िया जी।
0: जी जी जी,
2: हां जी, मैं भी जिदा एक स्केट जिदा ही नहीं सुनाई भाई खाली।
0: हां जी
2: हां जी, वो भी एक बंदा जिदा मेरा भी ना, वो नहीं फिर ना रखता भी ताया बनता, मैं के सुनाउण लग पिया।
0: अच्छा,
2: ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚ ਤਾਂ ਆਈ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਰੇਕ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਕਦੇ ਹੁਣ।
0: ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਬਣਤਾ ਬਈ।
0: ਅੱਛਾ,
2: ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੀ, ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਅੜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਤੋੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨੀ ਹੁੰਦਾ।
0: ਅੱਛਾ,
2: ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ।
0: ਓ ਮਾਈ,
2: ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾ।
0: ਅੱਛਾ,
2: ਤਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਬੰਤਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ
0: ਤਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ।
2: ਹਾਂਜੀ,
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ 4267 ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
3: ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ।
0: ਆਣ ਦੋ ਇਰਸ਼ਾਦ।
3: ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ, ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਜਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਦਰੀ ਚ ਜੜਿਆ ਨਗੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਜਹੀ ਉਮਰ ਬਾਲ

0: बैंक है ही नहीं, गवर्नमेंट है, पीछे ना रहिए, नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी 14 अक्टूबर को, अभी रजिस्टर कराएं, 1.5 महीने में फंडिंग टू टू करके आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगी।
1: क्या बात है, बिल्कुल, ते नंबर जरूर अपना शेयर कर दिए प्लीज।
0: बिल्कुल जी, नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75। ना हमने रिश्वत देनी है, ना हमने आगे किसी को रिश्वत देनी है, साफ काम, 199 फीस काम होने के बाद, 437-264-31-75, 437-264-31-75। नंबर एक और बार नोट करें, 437-264-31-75।
1: जी क्या बात है, 437-264-31-75, 437-264-31-75, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी लोकेटेड ने 218
0: एक्सपोर्ट बुलेवार्ड।
1: जी क्या बात है, बिल्कुल सर, हाँ जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी जी
0: जी, धन्यवाद,
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू कॉल, थैंक यू।

0: क्या बात है, बड़ा शानदार बंदा ना। ते इमेजिन करके जो बंदा गाना सुन रहा, एक आंख मारू दो मारू दोनों कट्ठिया कि मारा, ते पर बड़ा ही सुपर डुपर हिट गीत अपने टाइम दे विच अज भी सुन के बड़ा बंदा आनंद लैंदा, हासा जरूर आंदा। ते प्रोग्राम सर्व रेडियो ते साडे नाल एक बार फिर जुड़ चुके ने उमरप्रीत चावला जी। उमरप्रीत जी वेलकम बैक।
1: थैंक यू सो मच सरब जी। जी सो लाइफ इंश्योरेंस की आप गल की है, जिम्मे मैं अगे भी किया भी जिन्ने अपनी यंग एज है उन्ना आप वधिया प्रीमियम मिल जाता, हेल्थ करके रैकेट करके सारा कुछ ठीक हुंदा। सो यही रीजन हुंदा जो आप बच्चों की इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि बच्चों की इंश्योरेंस ऑफकोर्स आप नहीं सोचते होंगे कि आप इंश्योरेंस को देखना, आप कैश वैल्यू देखते हैं, आप बच्चों की अगो वैल्थ जनरेट करनी होंगी है। बट इंश्योरेंस वह एक कंपोनेंट है, वह वधिया रहता हों, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बच्चा या बहुत छोटा बच्चा तो वो कॉस्ट बहुत थोड़ी होंगी है इंश्योरेंस की। हेल्थ वो लॉक हुई हुई है, तुम पेड आ प्लान कर लिया, कल भी इंश्योरेंस के अमाउंट ने भी वधी जाना, मे भी आप 50,000 या लख नाल शुरू किया, लेकिन जो उन्हें अपने घर लेने या जो उन्हें अपना बिजनेस करना या जो उसकी फैमिली बननी है उदो तक परमानेंट इंश्योरेंस वध के हाफ मिलियन मिलियन की हो जाएगी, जिसे एक चंगी खासिया अमाउंट होंगे कैश वैल्यू का, जरा बच्चे के फ्यूचर लिए यूज कर सकते हैं। आप कल बिजनेस खोल के देना, घर की डाउन पेमेंट करनी है, वह सारिया चीजा उस प्लान की कैश वैल्यू यूज करके कर सकते हो। तो उन्हें वधी जाना कैश वैल्यू ने भी, जरा फेस अमाउंट है डैथ बेनीफिट है उन्हें भी वधी जाना। सो तुम कोई बच्चा लिए प्लान देख रहे हो, तुम अपने लिए देख रहे हो, या थोड़ा कोई भी क्वेश्चन है कि थोड़ा कोई मैडिकल इशू आ चुका, या कई बार आप कोई नॉन मैडिकल रीजन होंगे, बैंकरप्सी है, कोई चार्जिज है, ड्रिंक एंड ड्राइव के चार्जिज है, क्रिमिनल चार्जिज है, सानू लगता सानू इंश्योरेंस मिलनी नहीं, या कई बार आप हैजिटेट करते होंगे। सो कॉन्फिडेंशियल वे दे विच आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज नू, मैं चेक करके जिहड़ियां भी कंपनियां जिहड़ियां हाई रिस्क कंपनीज होंदियां वो इन्हां सारियां चीजा नू कवर कर दिया। सो आप देख सकते होंगे, मैं हमेशा कहती हाँ भी जे कोई हैल्थ इशू आ भी चुका या कोई नॉन मैडिकल प्रॉब्लम हो भी चुकी, तो भी उस टाइम से अपनी चीज नू सिक्योर कर लो, क्योंकि कई बार सानू ये लगता हों भी अज मैनू हैल्थ इशू आ गया, चलो कोई गल नहीं हूं तो आ ही चुका, हम दो साल रुक के लै लांगे, दो साल तक आपां नूं नहीं पता भी वो हेल्थ इशू का की होना, जे वध गया तो होर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जे वो ठीक हो गया तो आप री अंडरराइट करा के वापिस रेगुलर इंश्योरेंस दे विच जा सकते हैं। सो सारिया ऑप्शन ओपन होंगे, बीइंग इंडिपेंडेंट ब्रोकर मैं सारिया मेजर इंश्योरेंस कंपनीज नाल डील करनी हाँ। सो तुहानूं किते भी शॉप अराउंड करन दी लोड़ नहीं, चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस है, डिसबिलिटी, कोई तुसीं सुपर वीजा विजिटर ट्रैवल इंश्योरेंस की कोटेशन चाहिए है, या थोड़ा कोई भी क्वेश्चन है कोई इनवैस लैके RRSP नू पहला कर लेना, FHSA RRSP बच्चों का एजुकेशन सेविंग प्लान है, या RDSP रजिस्टर्ड

0: मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-55 तिथि पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: कर रहे हैं ताजी का सिद्ध करने लगी है, जरा सुन के सोनी हो।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि। भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

सपरती पादृष्टि कर पूरा संत ने दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की देह पहचान घट घट के पट पट की जान

सूर्य सुत प्रसन्ना सत्रामस्यावरदं पृशान्तः ब्रह्मोवाच शृणुध्वमृषय सर्वे शनिपीडाहरमहत कवचं शनिराजस्य सौरेणितममुत्तमम्।

ब्रह्मणि पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जानवीतति धर्मेण दत्तं मह्यं च कृपया पुष्करी पुरा त्रिपुरारिस्य कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा अनुज ब्रह्माय कृत्वा मधुकैटभयोर्भया सञ्जहारत्तबीजं यत्त्वा भद्रकालिका यत्त्वा हिमेन्द्रश्च शम्प्राप कमलानया।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार की प्यारा स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी श्रोताओं का वीकेंड उम्मीद रखती हूँ कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अब आपके लिए अक्टूबर 2 का दिन भी बड़ा महत्व रखता है। गांधी जयंती मनाई जाती है और आपने भी कहीं ना कहीं जरूर उनको याद किया होगा। तो हमारे नेशनल राष्ट्रपिता हैं, तो जरूर उनको याद किया जाता है। तो उनको और अब आपके लिए, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का टीवी चाहिए, बैक यार्ड में बढ़िया बढ़िया आपको गैजेट चाहिए, बैक यार्ड में आपको बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो ये सारा सामान फेस्टिव सीजन के लिए गिफ्ट देने के लिए आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनके बारे में जानकारी ले लो, स्पेशल्स के बारे में। तो फिर अपना घर से जालो फेस्टिव सीजन के लिए, तो उनको कॉल कर लो, ऑर्डर बुक कर लो 905-7900-045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਵੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3340। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3340। ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ आपके लिए बड़ी सुंदर सी मूवी आई थी ओल्ड इज गोल्ड कलेक्शन में से, ससुराल। तो सभी लोग जहाँ इंडिया जहाँ भी जाते हैं, ससुराल तो सभी जगह होता है, सभी जहाँ भी दुनिया में रहते हैं सभी कल्चर्स में होता है ससुराल जाना। तो आपको ससुराल फिल्म का मैं बहुत ही प्यारा सुना। पहले बाजू की अगर आपने वो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मदद करते हैं, तो ये जो है जो एचके मूवर्स आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-8004-416-524-6704।

होती है का स्वागत है घर संसार में। तो हालांकि ये जो फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट का जो था उस वक्त, तो लेकिन आप देख सकते हो सीनरी में कि कोरियोग्राफी कितनी बढ़िया की गई है, कमाल की कोरियोग्राफी की गई है इसमें। तो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, बहुत सुंदर फिल्म है, पुराने सभी एक्टर्स हैं इसमें, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो अब और भी गाने आपको सुनाएंगे, तो पहले आपके लिए सुनाएंगे बहुत ही प्यारा सा गीत। पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज बढ़िया लेके आना है फेस्टिव सीजन के लिए, नया टीवी लेके आना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल लगी हुई है। तो ये है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स। उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो गोल्फ वालों के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है। आप उनकी स्पेशल्स देखिए topchoiceelectronics.com। छोटी सी किचनेट आपको सेट करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए। उनका नंबर है 905-799-0045। अपने ऑर्डर पहले से बुक कर लीजिए फेस्टिव सीजन के लिए। तो अब उनकी स्पेशल्स देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए। अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो तो आपके लिए बड़ी ही खुशी वाली खबर है कि आपके लिए मास्टर खुलते हैं, आपने कुल्फी कोलिजन का काम करवाना हो तो आप वहां भी जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। जी हाँ, उनको topmasterkolijandepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और उनके बारे में आप देख सकते हो। तो अब किस किस्म की भी आपको मूविंग करनी तो आपके लिए एच मूवर्स घर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, गाड़ियां भी मूव करने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 400-524-4164-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। मूविंग कोई आसान काम नहीं होता, पर एच के मूवर्स आपके लिए हर तरह की आसानी कर देते हैं मूविंग में। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो, सराहते हो, मैसेज भेजते हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रोग्राम 25 साल से ऐसे ही चल रहा है, तो आप सभी की वजह से और स्पॉन्सर्स की वजह से ही हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। तो अब अगर आपके लिए इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने जा रहे हैं, तो थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के इलाके में साद महमूद आगे आए हैं। वो बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को मदद करते आ रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो काउंसलर की रेस में है। तो आप अपना आपका हक है तो जरूर, हम ये नहीं कहते किसी को भी आप वोट दो, किसी को भी आप वोट दे सकते हो, लेकिन आपका हक है तो इसको जरूर आप, ये जो इलेक्शन है इसमें काफी चीज आपको चुननी होगी, मेयर चुनना होगा, आपको काउंसलर चुनने होंगे, स्कूल ट्रस्टी चुनने होंगे, तो ये सारी जानकारियां भी डिबेट होंगे, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए अपने अपने इलाके में। हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो BVT रॉक क्लिफ ऑटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 डॉलर तक। फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये फिल्म आई थी 1963 में सेहरा, तो उसमें संध्या एक एक्ट्रेस थी, उसी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, लता जी का गाया हुआ गीत। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए, अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना लेना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे जाइए। करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ चाहिए, क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1730, 9058141730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमने जो गाने चुने हैं, तो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। पहले आपको बता रही हूँ कि अगर आपने किसी किस्म का भी पूजा का सामान लेना है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे पूजा के लिए। अभी अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और पितृ पक्ष के लिए भी पूजा के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई सामान, तो

0: इंडिया सजावट एंड पूजा हत्या आपको सब मिलता है, तो वहाँ आप जाइए और वहाँ से आप ले सकते हो।
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-5033 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि आपने अगर लंदन में के आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने क्लीजन का काम करवाना है, तो आप masterclusiondepot.com पर जाइए, उनके बारे में जानकारी लेकर के तो आप वहाँ पे आपको पूरी आपकी कार वेंट आपको एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत, फिल्म के आसपास, हेमा मालिनी।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, गाने पसंद आएंगे। तो एक फिल्म बड़ी बढ़िया आई थी, विदेश में थी फिल्म, तो हेमा मालिनी थी उसमें, लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, क्योंकि अगले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड है आप सभी का, तो थैंक्सगिविंग का। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सुहागा भला, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल वीक, एंजॉय सॉन्ग, रजेश खन्ना और आशा पारेख।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि। भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: सुप्रीता सदा शनि अष्टमस्ते सूर्य सुते जन्म द्वितीये नित्यं न पीड़ा जायते क्वचित इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेण्यं निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्तो दोषा नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्चरकवचौ सम्पूर्णौ
1: कवचस्तोत्रम्
2: श्री अंगारद कवच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि गायत्री छंद अंगारको देवता अं बीजं कं शक्ति रं कीलकं मम

कार्यै वशतु अम्राइं कवचं तं नेत्रयाय वशतु अम्रा अस्त्राय पटु तत ध्यानं वामे करे वैरवहं महं मनुषैलं परिश्रीं कर्मालयाख्यं दधानमाख्यामान सुवर्णभरणं भजीजोरत्कुण्डलमाञ्जनीयम् ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते पवन कामानल प्रभाज्वलत्वतापवत्सदेहाय अञ्जनी गर्भसम्भूताय प्रकर विक्रम वीर दैत्य दानवयक्षराक्षसो ग्रह बन्धनाय ग्रह प्रीत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बन्धनाय आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याकृतं बन्धय बन्धय सपमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय घे घे श्रीरामचन्द्र

मम सर्व शत्रून पश्यति एकादश शतवारं कृत्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हर्मर्मादा।

ब्रह्मणि पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जानवी तदि धर्मेण दत्तं मह्यं च कृपया पुष्करे पुरा त्रिपुरारिश्चय कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा मनोज ब्रह्माय कृत्वा मधुकैटभयोर्भया सञ्जहारत्तबीजं यत्त्वा पत्रकारिका यत्त्वा हिमेन्द्रश्च शं प्राप कमलालया यत्त्वा

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत प्यारा स्वागत है। सभी को नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का वीकेंड उम्मीद रखती हूँ कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अब आपके लिए अक्टूबर 2 का दिन भी बड़ा महत्व रखता है, गांधी जयंती मनाई जाती है और आपने भी कहीं ना कहीं जरूर उनको याद किया होगा। तो हमारे नेशनल राष्ट्रपिता हैं तो जरूर उनको याद किया जाता है। तो उनको और अब आपके लिए अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का टीवी चाहिए, बैक यार्ड में बढ़िया बढ़िया आपको गैजेट चाहिए, बैक यार्ड में आपको बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो ये सारा सामान फेस्टिव सीजन के लिए गिफ्ट देने के लिए आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनके बारे में जानकारी ले लो स्पेशल के बारे में, तो फिर अपना घर से जा लो फेस्टिव सीजन के लिए। तो उनको कॉल कर लो, ऑर्डर बुक कर लो 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। हिमालतर वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3340, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3340, BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ आपके लिए बड़ी सुंदर सी मूवी आई थी ओल्ड इज गोल्ड कलेक्शन में से, ससुराल। तो सभी लोग इंडिया जहाँ भी जाते हैं ससुराल तो सभी जगह होता है, सभी जहाँ भी दुनिया में रहते हैं सभी कल्चर्स में होता है ससुराल जाना। तो आपको ससुराल फिल्म का मैं बहुत ही प्यारा सुना, तो पहले बाजू की अगर आपने मूव तो HK मूवर्स आपको कैनेडा भर में मदद करते हैं। तो ये जो है जो HK मूवर्स आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-804-416-524-6704। तो आइए सुनिए गाना।

होती है, आपका स्वागत है घर संसार में। तो हालांकि ये जो फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट का जो था उस वक्त, तो लेकिन आप देख सकते हो सीनरी में कि कोरियोग्राफी कितनी बढ़िया की गई है, कमाल की कोरियोग्राफी की गई है इसमें। तो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, बहुत सुंदर फिल्म है, पुराने सभी एक्टर्स हैं इसमें, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो अब और भी गाने आपको सुनाएंगे, तो पहले आपके लिए सुनाएंगे बहुत ही प्यारा सा गीत। पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज बढ़िया लेके आना है फेस्टिव सीजन के लिए, नया टीवी लेके आना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल लगी हुई है। तो ये है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है। तो ग्वाल्फ वालों के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है, आप उनकी स्पेशल्स देखिए topchoiceelectronics.com। छोटी सी किचनेट आपको सेट करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए। उनका नंबर है 905-799-0045। अपने ऑर्डर पहले से बुक कर लीजिए फेस्टिव सीजन के लिए। तो अब उनकी स्पेशल्स देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए। अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो तो आपके लिए बड़ी ही खुशी वाली खबर है कि आपके लिए मास्टर कुल के हैं, आपने कुल्फी कुलजन का काम करवाना हो तो आप वहां पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। जी हाँ, उनको topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनके बारे में और उनके बारे में आप देख सकते हो। तो अब किस किस्म की भी आपको मूविंग करनी तो आपके लिए एच मूवर्स घर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, गाड़ियां भी मूव करने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 400-524-4164-1652-4670 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। मूविंग कोई आसान काम नहीं होता, पर एच के मूवर्स आपके लिए हर तरह की आसानी कर देते हैं मूविंग में। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो, सराहते हो, मैसेज भेजते हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रोग्राम 25 साल से ऐसे ही चल रहा है, तो आप सभी की वजह से और स्पॉन्सर्स की वजह से ही हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। तो अब अगर आपके लिए इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने जा रहे हैं, तो थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के इलाके में साद महमूद आगे आए हैं। वो बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को मदद करते आ रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो काउंसलर की रेस में है। तो आप अपना आपका हक है तो जरूर, हम ये नहीं कहते किसी को भी आप वोट दो, किसी को भी आप वोट दे सकते हो, लेकिन आपका हक है तो इसको जरूर आप, ये जो इलेक्शन है इसमें काफी चीज आपको चुननी होगी, मेयर चुनना होगा, आपको काउंसलर चुनने होंगे, स्कूल ट्रस्टी चुनने होंगे, तो ये सारी जानकारियां भी डिबेट होंगे, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए अपने अपने इलाके में। हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 तक। फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अतें डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, चार टायर का सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हमिल्टन
कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो मिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत। और जब आजकल

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये फिल्म आई थी 1963 में सेहरा, तो उसमें संध्या एक एक्ट्रेस थी, उसी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, लता जी का गाया हुआ गीत। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए, अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना लेना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे जाइए। करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ चाहिए, क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमने जो गाने चुने हैं, तो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी किस्म का भी पूजा का सामान लेना है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे जरूर पूजा के लिए। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और पितृपक्ष के लिए भी पूजा के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट पे आपको सब मिलता है, तो वहाँ आप जाइए और वहाँ से आप ले सकते हो।
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5730 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि आपने अगर लंदन में के आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने क्लीनर का काम करवाना है, तो आप masterclean.com पर जाइए, उनके बारे में जानकारी लेकर के तो आप वहाँ पे आपको पूरी आपकी कार वैंट आपको एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत, फिल्म थी आसपास, हेमा मालिनी।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, गाने पसंद आएंगे। तो एक फिल्म बड़ी बढ़िया आई थी, विदेश की फिल्म, तो हेमा मालिनी थी उसमें, लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, क्योंकि अगले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड है आप सभी का, तो थैंक्स गिविंग का। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सुहागा भला, हैव ए वंडरफुल डे, वंडरफुल वीक, एंजॉय द सॉन्ग, रजेश खन्ना और आशा पारेख।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

गोविंद कृपा तारे, प्रभ राखे पैज हमारे। सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा। गोविंद कृपा तारे, प्रभ राखे पैज हमारे। हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पाए।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se anu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kaalon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100. कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000888 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: इंफोटेनमेंट नाल भरपूर रेडियो प्रोग्राम नजरिया एंड ओपिनियन।
1: दिस प्रोग्राम इज अ प्राउड मेंबर ऑफ द कैनेडियन पंजाबी ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन CPBA।
2: गल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल।
3: हुन ता गल्ला मिठिया ही होनगिया गिल स्वीट फैक्ट्री दे नाल। जे तुसी आनंद लेना चाहुंदे हो लजीज मिठाइयां दा, लाजवा वेजिटेरियन खाने दा, ते टोल वजा के दस दो सारियां नू पहुंचो गिल स्वीट फैक्ट्री, जो सर्व करदे ने थानू दो लोकेशन तो Brampton, Williams Parkway and Airport Road, अते Fresh को Milton दे विच। ज्यादा जानकारी ले विजिट करो gillsweetfactory.com, gillsweetfactory.com। जिंदगी दी मिठास Gill Sweet Factory दे नाल। आहो
1: विजिटर टू कैनेडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स, बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-88-62, 647-400-6862।
4: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, हुणे ही सानू कॉल करो फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्ता। कॉल करो कैनेडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
4: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
6: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। निघी जी आया, जिहड़े दोस्त हुणे जुड़े ने जी उन्हां नूं निघी जी आया कहिंदे आ, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल बन जांदा है। 12 तो 1 रामस पंजाबी ते 1 तो 2 सुनते हो तुम प्रोग्राम नज़रिया एंड ओपीनियन। और इन्होंने प्रोग्राम्स के दौरान साढ़े नाल स्टूडियो गलबात करने वास्ते टैलीफोन नंबर होंगे ने 416-233-7368 या 8297-416-233-7368-8297-416-233-7368-92-97। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल, कोई भी गलबात तुसी मेरे नाल प्रोग्राम तो बाद विच करनी होवे ते फिर 416-669-1379 ते कीती जा सकदी हुंदी है। 416-669-1379 मेरा टैलीफोन नंबर है अगर तुसी प्रोग्राम तो बाद विच गल करनी होवे। तां इस वेले आपां जुड़ चुके हां प्रोग्राम नज़रिया दे नाल, और तुसी कोई भी सुनेहा, कोई इनफॉर्मेशन टैक्स के रूप में भेजनी है तो फिर 416-669-1379 से भेज सकते हो। वट्सएप मैसेज के रूप में भी की जा सकती होंगी है। तो जे स्टूडियो कॉल करनी है तो नंबर मैं फिर दस दिना जी 416-233-7368-92-97 416-233-7368-8297 इन्हां नंबर से कॉल करके कोई भी गलबात करनी है, कोई जानकारी साझी करनी है तो की जा सकती होंगी है। और सानू सहयोग अपनी गलबात ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲ ਵਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। 905-455-0752 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 416-937-2061 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ 905-678-1200 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ 416-677-2222 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 6416-667-2222 ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੱਡਾ ਜੀ 416-747-6800 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416-747-6800 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗਿਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਗਿਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 905-799-2616 'ਤੇ 9057-99-2616। ਗਿਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2131 ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਗਿਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ 9057-99-2616 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 100% ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 80-90% ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਔਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ।
7: मम्मी पापा हमारे जो है मेडिकल स्टोर की तरह होते हैं, वो मेडिकल स्टोर जहां हर दर्द की दवाई मुफ्त में मिल जाती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक कहानी सोशल मीडिया पर काफी दोस्तों ने भेजी, जिसे वंदना जी ने लिखा है। कहानी है कि अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए तो क्या हो। इस कहानी में एक माँ के पास में प्रिंसिपल का कॉल आता है स्कूल से, और मैडम कहती है कि आप जल्दी चले आइए, आपके बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया कि हम चाहते हैं अर्जेंटली आपसे मिलने। मैडम भागते हुए पहुंचती हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं मेरे बेटे ने कौन सी शरारत कर दी। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कॉपी आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि हमने एक निबंध लिखने को कहा था कि अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए तो, और आपके बेटे ने जो लिखा है, पहले तो हम लोग बड़े हंसे और फिर बाद में सब चुप हो गए। आपके बेटे ने लिखा कि मेरी माँ बहुत गुस्सा करती है, सुबह 5 बजे उठ करके जो पढ़ने बैठा देती है, और अगर मैं होमवर्क पूरा ना करूँ तो बड़ा डांटती है, मोबाइल चलाने देती है। मुझे बार बार लगता था कि काश मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। लेकिन पता है क्या हुआ, पिछले सोमवार को मेरी माँ बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने कहा आप कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिएगा। उस दिन पहली बार मेरी माँ सचमुच बिस्तर पर ही थी, उठी नहीं। सुबह अलार्म बजा तो किसी ने मेरे बाल सहला करके नहीं कहा कि बेटा गुड मॉर्निंग, स्कूल नहीं जाना क्या। मैं देरी से उठा, मुझे यूनिफॉर्म का पता नहीं था कहाँ रखी है, वो यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी, मेरे जूते दूसरे कमरे में थे, मोजे दूसरे कमरे में थे, टिफिन जो था वो तैयार नहीं था। पिताजी ने कोशिश की रोटियां बनाने की लेकिन रोटी गोल नहीं बनी, पता नहीं कौन से देश का नक्शा बन गया। मैंने पहली बार देखा कि मेरी माँ एक साथ कितने काम करती है। स्कूल से वापस आया ना तो दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था, मां बिस्तर पर थी फिर भी मुस्कुराकर पूछने लगी, आ गया मेरा राजा बेटा। मैंने कहा मां भूख लगी है। उन्होंने उठने की कोशिश की, मुझे खाना परोसने की कोशिश की, लेकिन बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी दर्द की वजह से, वापस लेट गई। उस दिन पहली बार मुझे पता चला किचन में प्लेट कहां रखी होती है, पहली बार मैंने खुद के लिए भोजन रखा। खाना ठंडा था लेकिन सच बताऊं उससे ज्यादा पूरा जो है घर ठंडा लग रहा था। रात को मैंने देखा कि मां को बहुत तेज बुखार था, फिर भी पापा से पूछ रही थी बेटे ने दूध पी लिया, उसने होमवर्क कर लिया क्या, उसकी मैथ की कॉपी जरूर रखना, ड्राइंग कॉपी जरूर रखना। उन्हें अपनी दवाई से ज्यादा, अपनी बीमारी से ज्यादा मेरी चिंता थी। अगले दिन मैंने माँ का मोबाइल उठाया, मुझे लगा कि गेम्स होंगे। माँ के मोबाइल में तो बहुत सारे फोटोज थे और सिर्फ मेरी फोटोज थे। मैं पहली बार स्कूल गया था तब की फोटो थी, पहली बार साइकिल चले उसकी फोटो थी, पहली बार मैंने वो सुपरमैन की ड्रेस पहनी उसकी फोटो थी। माँ के मोबाइल में उनकी पिक्चर्स अच्छी वाली थी नहीं, कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं थी, मेरी फोटोज थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद माँ अपनी जिंदगी जीती नहीं है, वो तो हमारी जिंदगी जीती है। तीसरे दिन मैंने माँ के पैर दबाए, उन्होंने मुस्कुरा करके पूछा कि आज क्या हुआ, सूरज पश्चिम से निकल गया क्या? मैं हंस तो दिया लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। मुझे याद आया मैंने उन्हें कितनी बार कहा था कि आपको कुछ नहीं आता, हर समय डांटती हो। लेकिन सच बताऊं तो सच ये था कि मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे पता ही नहीं था मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म कहाँ रखी होती है। मेरी स्कूल की शर्ट जो अलमीरा में अपने आप नहीं आती है, टिफिन अपने आप नहीं भरता है, लंच बॉक्स अपने आप तैयार नहीं होता है, बिस्तर अपने आप ठीक नहीं होता है, घर अपने आप साफ नहीं होता है, मेरी पसंद का खाना अपने आप नहीं बन जाता है। इन सब के पीछे मेरी माँ की नींद है, उनका समय है, उनका त्याग है, उनकी पूरी जिंदगी है। अगर भगवान मुझसे पूछें कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं कहूंगा माँ होना। क्योंकि माँ छुट्टी नहीं ले सकती, उन्हें बुखार हो तब भी घर चलता है, उन्हें दर्द हो तब भी बच्चों की चिंता है, उन्हें रोना है तब भी वो खाना मुस्कुरा करके जो है परोसती हैं। अब मैं भगवान से कभी नहीं कहूंगा कि मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए, मैं तो यही कहूंगा कि भगवान मेरी उम्र भी मेरी माँ को दे देना। क्योंकि अगर माँ घर में होती है ना, तो छोटा सा घर भी जन्नत लगता है, छोटा सा घर भी स्वर्ग लगता है। वो निबंध जो था वो माँ पढ़ रही थी कॉपी में, वो तो वहीं समाप्त हो गया। लेकिन कॉपी पकड़ते पकड़ते उनके हाथ कांपने लगे, उनके आंसू जो है कॉपी के पन्नों पर गिरने लगे। उन्हें याद आया कि पिछले महीने तो बेटे ने गुस्से में कहा था कि आप सिर्फ डांटना जानती हो। उस दिन पूरी रात वो रोई थी, लेकिन उसी बेटे ने आज बिना उनके कहे पूरी जिंदगी पढ़ ली थी। प्रिंसिपल मैडम कहने लगी उन माँ से कि मैडम बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा त्याग पढ़ रहे होते हैं, बस उन्हें समझने में थोड़ा समय लग जाता है। माँ जब वो घर पहुंची तो उनका बेटा दौड़ के आया, गले लग गया। उसने कुछ नहीं बोला, माँ ने कुछ नहीं बोला, खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों शब्द थे। बच्चे जो है ना, कई बार उन्हें समझने में देरी हो जाती है। उस बच्चे ने तो समझ लिया, खुद अपनी प्लेट उठाना शुरू किया, खुद अपने जूते साफ करना शुरू किया, खुद अपनी यूनिफॉर्म को सजाना शुरू किया, और रात में कहने लगा माँ से कि माँ आज से मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन काम में आपका हाथ बटाऊंगा। माँ को ऐसा लगा जैसे उनकी सारी थकान उसी सेंटेंस में समा गई थी। बहुत छोटी सी कहानी है जो

0: 1 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रांड्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: Welcome to Glitz by Gills Banquet Hall, a beautiful space with modern design, state-of-the-art sound, state-of-the-art lighting, and wait till you see mouth-watering delicious food. Whether it's an engagement party, a wedding, a birthday party, or corporate event, Glitz by Gills Banquet Hall has exactly what you need. Moments become a memory, memories become treasures. Call 905-724-7100, 2131 Williams Parkway, Glitz by Gills Banquet Hall.
5: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-747-4800। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਜਨ ਟਿਊਨ ਅਪ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਿਊਨ ਅਪ, ਯੈਲੋ ਸਟਿੱਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਊ ਵੈਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ। ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ 21 ਮੈਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵ, ਨੌਰਥ ਯਾਰਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਡਾ ਹੋਰੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ 416-747-4800 416-747-6800 Premium Auto Repairs and Used Car Sales।

482-0003 क्योंकि क्वालिटी ते टेस्ट दा ध्यान रखा जांदा इत्थे पूरा। सो एक बार आके टेस्ट करो उस तो बाद अपना ऑर्डर प्लेस करो। की कहने हो जी? एक बार आके टेस्ट करो उस तो बाद अपना ऑर्डर प्लेस करो। किथे? द खोया कैफे ते 647-482-0003। रॉयल इंडिया ग्रोसर्स खुला 24 घंटे। फोन नंबर 9057948600 9057948600। लिंक इट अप स्टोर तुहाडे लई कोई भी सैलफोन कोई भी कंप्यूटर कॉल करो 6475100061 6475100061। आपां मिलांगे हुण अगले संडे किन्ने बजे? 2 बजे। किथे? 5:30 AM ते नाले टिकटॉक दे उत्ते। उदों तक मेरे वल्लों सारयां नूं प्यार भरी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: इको इकना कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल
2: 32-55-80
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: ओ, काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: 6477 739 8710।
1: मैं क्या किथे जा रही है?
2: 10 बारी क्या पिछो हाक ना मारिया करो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी चली सी।
1: ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी हूँ 60,000 स्क्वेयर फीट ते मूव हो गया।
3: 100 Kennedy Road ब्रैम्पटन, हर तरह की ग्रोसरी ले पहुंचो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 416-700-9100।
4: www.reetiglassandwindow.com।
5: हर महीने मैकेनिक नो पैसे दे देंदे हो। ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नो गोद ले ले।
6: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
5: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
7: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
5: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
7: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसीसागा। कॉल 647-581-9999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
8: आ पैने खरीद लिया गहने
9: किथे चाने ना कोना किथे नी मिलया चंगा सोना
8: ले ए वी गल कोई कहण दी है सोना ता सोना ही हुंदा है गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है
9: गल ता तेरी सही है पैन ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
10: ਜਨਕ ਜੁਐਲਰਸ ਜਨਕ ਜੁਐਲਰਸ ਤੇ ਸਟੋਨ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਕ ਜੜਾਉ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੈਟਸ ਰਿੰਗਸ ਬੈਂਗਲਸ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇਅਰਿੰਗਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਨਕ ਜੁਐਲਰਸ ਕਾਲ 905-230-8800
11: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमेटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL because we care
12: जे मेनू कुछ हो गया तो की तुसी भी मेरी आज ताजमहल बनवाओगे
13: दस किदा दी गल्लां कर दियां तू
12: क्यों
13: मैं तो प्लाट भी ले लिया बस हुण तेरी देर आ
14: फट्टे मुँह तेरे
15: विशन वैनिटीज से न्यू शिपमेंट आ गई है बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस ए नई नई वैनिटीज दी परचेज से सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री विशन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक कॉल 905-671-1800 905-671-1800
16: कंडीशंस अप्लाई
17: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave Tatla! From the Dave Tatla News Desk, locally covered, nationally connected.

ऑफ मार्केट डील है। जेकर तुसी बाय सेल या इन्वेस्ट करना चाहते हो मैनू हुने कॉल करो। अभिषेक रियल्टर 647-792-7000, 647-792-7000।

0: हाँ जी हरमन जी।
1: अहे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी।
0: ए फर्क नी पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना की संबंध।
0: मैं तो रंग दी गल करदा वी भाई चंगा साबण वरत्या करो।
1: हाँ।
0: माड़े साबण रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओनी वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी ये कपड़ियां दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी है।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां पहला मैनू ए दसो भी है केड़ियां।
1: जो क्या गल सुन ला तू।
0: सुन लांगे पहला गल तां दसो भी नीति केड़ी है।
1: मेनू नी पता।
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: हां जी
1: उन्हां दी जिन्नियां भी नीतियां ने
0: जी
1: उन्हां दा प्रचार पता हुण कौन करूगा।
0: कौन करू।
1: सनी देओल।
0: सनी लियोन।
1: सनी लियोन नहीं सनी देओल।
0: अच्छा
1: अपना वो जड़ा नलके आला
0: धर्मेंद्र भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला।
1: हां ते
0: यार वैसे मेनू पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करावनी है।
1: क्यों।
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई।
1: अच्छा
0: नलके पानी कढ़ देनी नाले नलके पटा लांगे नाले प्रचार करा लेंगे।
1: एक और भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट दा फेसना हो पहला गाना सुनना ही नहीं तां मैं रो पणा जी।

0: For advertisements and information,
1: साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551
2: स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या

से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।